पौड़ी चाकर लगे चाकरी चले खस में पाए, हुरमत सुनो अगलियो बजो पेद उड़ा खाए, खस में कर बराबरी फिर गैर तंद्र पाए, बजो गवाए अगला मोए मोए पाना खाए, जिस दा दिता खावना तिस कहिया साबास, नानक हुकम ना चले नाल खसम चले अरदास।

पौड़ी नानक अंतर जपनी हता के पारावार, आप कराए साखती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरियां तुरही चरें बिसिया, आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार, नानक करना जिन किया।

0: गए मसकत काल, नानक ते मुखे अजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हरगोबिंद नो सिमरा श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए। सब थाई हो सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हो सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई। तेग वाहे देख के

गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चेड़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाए तिन्हां दी कमाई।

जिस पास बैठिया सोही सबना दा वेसा। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

गया प्रावयाप मेटाया, जानकी लाज रखाई। साध संगत ते सब फल पाए, सत गुर कै बल जाई। हालत पालत प्रभ दोवै सवारे, हमरा गुण अवगुण ना विचारिया। अटल

पौड़ी बड़ी हूँ बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जपन करतबा जी अंदर जियो सबके जान ला सब किस तरह बस तेरा घर भला तेरे घर आनंद बधाई तुद कर।

0: गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: Yeah.

0: भाग बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहिगुरु।
1: पौड़ी बड़ी हूँ वडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जपन कर तुबा।

तेरा अंत न पारावर राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब ते आवह सब ते आवह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जीय तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाओ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवह हर ते आवह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जीय जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनू तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे
ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬਿਯਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜ

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबयो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होय चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काव हो, आप हाथ दे मोह बचाव हो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूरन होय हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चौन चौन सत्र हमारी मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहोर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा।

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हिब खाने ओ दोहरा

सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब आधारो। जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होय उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर धारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं वसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमानियां दे मान नतानियां दे तान नियोटियां दी ओटा धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शबद चौंकी सो दर रहरास साहिब जी दे पाठ जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह।

मान ठौर नांगी जह जाता खीर अधार बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाय सार समाल माता मुख नीर तब ओह तृप्त

खीर आधार बारक जब होता, बिन खीरा रहन न जाय। सार संभाल माता मुख नीरा, तब ओह तृप्त अघाई। हम बारिक पिता प्रभ दाता, भूल हैं बारिक अनेक लख बरियान ठौर नाही।

अमृत शौड भिख भिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखह शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखह शरणाई सुकह टल गुर सेवियै अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नो

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्ब सुख हर नाम बढ़ाई,

0: जग जीवन दाता पाया।
1: पौड़ी बिन सतगुर के नै ना पायो, बिन सतगुर के नै ना पाया। सतगुर विच आप रखियो अनकर प्रगटाक सुनाया, सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम यह विचार है जिन सच्चे सो चित लाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी तोर कर्म जना को तुद पाया ततनी खसम त्याया। एना जनता का बस किच नाई तुद वेकी जग तु पाया। एक नानो तू मेले का पो तुद खुआया। गुर कृपा ते जाने जिथे तुदा बुझाया। सहजी सस माया सहजी सस माया।

0: कुंभ पदा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का पदा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए।
1: पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार तो मी साध न मारिए, जेहा काले कालना तिवे ना उपचारिए, ऐसी कला ना खेटिए जिधर के गया हारिए। पढ़िया ते उमिया विचार के विचारिए, मुहि चलै सो के मारी, मुहि चलै सो के मारी।

आलप सुख बंधन, कोट जन्म कहाँ दुख पौ, सिखिया संत नाम भज नानक, राम रंग

माया मत कहाँ लो गारो, छतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात रिदे ना विचारो, रथ न सुन गस सिंघासन, शिन में त्याग नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दो कर चारो, मित्र न पुत्र कतर साजन साख, हे भगवंत कृपा कर तारो, श्री पतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत।

सब आकाश नामावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर भरयो है दह दिस ताए महाबिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रो

0: प्रेम भगत उदर से नानक कर कृपा कर कृपा संत आप करियो है।
1: गुण समो फल सगल मनोर पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रभतारी साजन मीत सदा हर बंदप जीतान प्रभ प्राण अदारी ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
2: आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जर्यो ना जात रहो जन तूरे लग नीर ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह सिदे हर नाम खग।
3: उद्यम कर लगे पोपति बिछड़े अनेक शास्त्र बोखटुआ पसम लगाए तीरथ पोपम ते सुखम दे बंदे बहुजटुआ बिन हर पयन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोमपका अनेक पात थाटे कर थटुआ।
4: गुण गावै पायाल भगत ना

0: जिन वेद व्याकरण विचार, ब्रह्मा गुण उच्चर जिन हुकम सब श्रेष्ठ सवारी, ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानो, जप कलश जस नानक गुर सहज जोग जिन मानो।
1: देह न गेह न नेह न नीता, माया मत कहां लोगारो, शतर न पतर न चोर न चावर, बहती जात हृदय न बिचारो, रथ न असव न गज सिंघासन, छिन मह त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दउ कर चारो, मित्र न पुत्र कलतर साजन सख, उल्टत जात बिरख की शारो, दीन दयाल पुरख प्रभ पूर्ण, छिन छिन सिमरो अगम पारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो।
2: एक मन पुरख त्याय बरदाता, संत सहार

शिव जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्हां जिन्हां गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक परोसा नामदान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत